कोय। जेवड़ाप देवड़ तेरी दात, जैन देन करके गीती रात, खासम विसार हैं ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सदगुर सदपुरखा, बिनो गुरु गुरपास, हम कीरे किरम सदगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोकव राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास राव। हार जान केवड भाग बडेरे, जिन हर हर शरदार प्यास, हर हर नाम मिले त्रपदास है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मेल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वै उद्म, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जन तो पाई, तां का रिजका गै कर तरिया। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनेता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर, काही मन पाव करिया। उडे उडया वैसे कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सुधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पार वरिया। राग आस्था महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव हैं सब त्याव हैं तुद जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जी आका दातारा। हर त्याव हो संत जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बिचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावहें हर त्यावहें तुद जी, से जान जुग में सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तैन टूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी,

पड़ है मो स्मृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई।

अतहडुभियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियारा ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक जन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पही परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अब्र काज तेरा कितना काम

कह राव। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दोष्ट सब तुम कावो। आप हाथ दे मुहि बचावो, सुखी वसै मोरो परिवार। सेवक सिख सब करतार, मोर अच्छा निज कर दे करें। सब बैरन को आज संगरे आए, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अबर ना त्याऊं। जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सतर हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे भरे आए। मरण काल का त्रास ने भरे आए, हु जो सदा हमारे पछा। सरिया सुजू करे और अच्छा।

काल पाई कर विषण पर काशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, भेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहीं हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बलमो बध कियो। कट कट के अंत

कृपा दृढ़ कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाई साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान है, कट कट के पट पट की जान है। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे, तुम सब ही तेरे तन राल मां।

दुखत हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्ट रेष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट धन जाहि निहरि हो, ताके ताप धन कमो हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सक न कोई।

खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दले उबारी, सर्ब ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेह बचाई। सवैया पाई कहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख दरे नहीं आने ओ, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने ओ, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहुपेद कहें हम

सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आओ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारणा, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही करते रह करता।

रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरविट हो, जिस दियां ही वड़ियाइया, कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द जद कर सभागे।

गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन

प्रतिष्ठा नहीं पुराणी, यह गाथा बाल शहीद दी है नहीं पुराणी। Yeah.

मन कोई स्लेट वर्गा हों जो जहा अखर पा दे उसके मन से उतरिया जाएगा। बचपन में ही जो बच्चे घर में सिखी का माहौल मिल जाए, जो उसके माता पिता गुरु घर के यतनेमी हो कोई गल नहीं कि बच्चा गुरु को जिंदगी भर दूर चले जाए या कोई दूजा धर्म अडाप्ट कर ले। पर जिथे मापिया को ही बच्चों पंजाबीयत गुर इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, उत्थे बच्चों का भटक जाना यकीन होया करता है।

रतन निर्मूलक उन पदार्थ पाया भगत उसी रतन नु प्राप्त कर लेंगे। भगतां दे अंदर उसी रतन दी जो है चाहत है, और जैसे उस बच्चे कोल ए रतन छुपे आउंदा है, गुझे रूप च आउंदा है, आम भाव बैरूनी दुनिया नु जो है नहीं पता आउंदा, भगत भी इस रतन नु हमेशा छुपा के रखण दी कोशिश करदे ने। आप कहंदे ने अनेक जतन कर हृदय राख्या रतन न छपे छपाया। ए गल वखरी है कि जब गर्भकाल तो बाहर आके उस ध्यान में ही रतन की प्राप्ति होती है तो फिर ध्यानी छुपया नहीं रहता। ये ठीक है कि माता का गर्भ उधर दस देता है कि इस बीच कोई जीवन पल रहे है, कोई जीवन है। ये गल वखरी है, समाधि लीन है, एकाग्र है, ध्यानी नु वेख के भी पता चल जाता है ते जापदा है परमात्मा दे गर्भ दे चला गया, ते ईश्वर दे गर्भ दे चला गया, ते परम चेतना दे गर्भ दे चला गया। जो माता दे गर्भ दे बच्चा है सारी जिम्मेवारी मां दी, जो परम चेतना दे गर्भ दे चला जांदा है सारी जिम्मेवारी परम चेतना परमात्मा दी, ईश्वर दी, निरोल ईश्वर दी। इस वास्ते अगर अनुभव ये आख रहा है कि सारी दुनिया दे धार्मिक स्थान परम चेतना दे गर्भ की तलाश करने लई एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं, ते धर्म मंदिरां दी तरफ भजे जांदे मनुख गर्भ की तलाश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब इसके कोल सूक्ष्म शरीर सी तो इसने माता दे गर्भ की तलाश की थी, हुण इसके कोल अस्थूल शरीर है तो इसने परमात्मा दे गर्भ की तलाश की, ईश्वर दे गर्भ की तलाश की थी। बकायदा मंदिर दे जिहड़ी गुफा हुंदी उहनूं ते कहिंदे गर्भ ने, मंदिर दा एक गर्भ है और उसकी परिक्रमा कीती जांदी। गर्भ की परिक्रमा क्यों कि गर्भ दे अंदर देवता है, जद भी कोई परमात्मा दा गर्भ प्राप्त कर लैंदा है उह ते देवता हो जांदा है, ऐसा देवता हो जांदा है जैसे कि सूक्ष्म शरीर माता दे गर्भ विच प्रवेश कर गया देवता ही है। और एक ऐसी प्रथा भी साढ़े देश विच लंघी है कि जब कोई औरत गर्भवती हो जाती सी तो उसकी पूजा होंदी सी, परिवार के सारे सदस्य उसकी परिक्रमा करके पूजन करते सन। क्यों कि ए अज देवल बन गई है, कोई देवता समाधि लीन बैठा इस दिन। अगर मंदिरों की पूजा है तो मैं इसलिए ये परम चेतना का एक गर्भ का साकार स्वरूप ने जिथे बैठिया बैठिया कोई समाधि लीन हो जाए तो परमात्मा के गर्भ विच बकायदा स्थित हो जाता है, टिक जाता है, और हूबहू इस तरह टिक जाता है जैसे कि माता के गर्भ विच बच्चा। तो जिवें सूक्ष्म शरीर मां का गर्भ लभदा है, ये अस्थूल शरीर परमात्मा का गर्भ लभदे ने, ईश्वर का गर्भ लभदे ने, और सारी जिंदगी भर उसी गर्भ की जो है तलाश आती है। गर्भ चो बाहर आंदे हां ये जो बच्चा रोया है बस उस ध्यान दे टूटन करके जो है रोया है, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया, दूजे पहरे रहन के वनजारिया मित्रा विसर गया सब ध्यान, हथों हथ न चाहिए वनजारिया मित्रा ज्यों जसोदा घर कान, हथों हथ न चाहिए प्राणी मात कहे सुत मेरा, चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं किस तेरा, जिन रच रचया तिसे न जाने मन भीतर धर ध्यान जियो, कहो नानक प्राणी दूजे पैरे विसर गया ध्यान। जीवन रूपी रात दा दूजा पैर ते बचपना ध्यान जांदा रे, ध्यान टूट गया। प्रथम रोया क्यों सी ए भी भूल गया, क्योंकि रोने होर बहुत पैदा हो गए, और अनंत खिडौणियां दे रोणियां दे तरह तरह के पदार्थां दे रोणियां दे ईश्वरमई ओ ध्यानमई रोना दब के रह गया। जब कभी किसी की सुरत शब्द नाल जुड़ती है ते जब रोसदा है ते ए ओही रोना आउंदा है जिहड़ा प्रथम ए रोया सी जब माता दे गर्भ तो बाहर आया सी। ए रोना जिसनों भी नसीब हो जाए समझ लो उसने परमात्मा का गर्भ नसीब कर लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जियो, ये अवस्था जिसनों प्राप्त हो जाए समझ लो उसने वो प्रथम रोना लभ रहा है, जिसने प्रथम रोना लभ रहा है वो प्रथम आनंद भी लभ लेगा जिहड़ा उसनों माता दे गर्भ विच प्राप्त सी। तीसरे चौथे पैर विच इस प्राणी ने
इस जीव यात्री ने इस तरीके नाल अपनी तर्ज जिंदगी बतीत की थी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अगे इंज वर्णन करदे।

धन जो वंशों चेते हर का नाम चेते बन जारे अमितरा बद्धा छुटे जिते हर का नाम न चेते प्राणी बिकल भया संग माया धन सों रत्ता जो बन मत्ता अहला

जो बात गुरै न मैं सात गुरै न मैं श्री गुरुदेव न मैं अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कले सतान माय मिटाओ सिमरों जास विसंबर एक नाम जपत अगणत अनेक वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जीव सावे काम की महिमा गणी नावे कांखी एक दर्श सुहारो नानक उन संग मोरे उदारो सुखमणि सुख अमृत प्रणाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। गुरु साहेब गुरु अर्जन साहेब महाराज श्लोक विच उच्चारण करते हैं आज सच सत स्वरूपा सदीवी सच श्री वाहिगुरु जी नू मैं नमन करता हाँ। आद गुरै न मैं जुगाद गुरै न मैं जगत दे बनाउन हारे सत स्वरूपा सदीवी सच सतगुरु स्वरूप नू मैं नमन करता हाँ। सत गुरै न मैं योग पुरुष जगत गुरु श्री गुरु नानक साहब जी नू मैं नमन करता हाँ। श्री गुरुदेव न मैं श्री हजूर महाराज श्री गुरु रामदास महाराज नू मैं नमन करता हाँ। जिन्ना तो मैनू सत दी लखता होई है अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहि मिटावो। वाहिगुरु जी का मैं सिमरन करता हाँ ते अंत अंत सुखां नूं भोग रहा हाँ। कल कलेश तन माहि मिटावो मन और तन का दुख वाहिगुरु जी दे सिमरन कीतिआं समाप्त हो जाता है। सिमरों जास विसंबर एकै नाम जपत अगणत अनेकै। मैं उस वाहिगुरु जी का सिमरन करदा हाँ जिन्हां ने इस जगत नूं बनाया है ते जगत दे पालनहार हन जिन्हां दा नाम अगणत ही जीव

वेद पुराण ते सिमरतियां दे विच भी जो अमृतमई वचन शुद्ध अक्षर राम नाम ही सत है, उस वाहिगुरु नाम सत दा मैं सिमरन करदा हां।

प्रभका सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन गर्व ना वसै, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया गर्भ जोन विच नहीं आईदा। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया जम दूत भज जांदे हन। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, वाहिगुरु जी का सिमरन अमर पदवी बख्शदा है, मौत तो परे होके अमृत जीवन वाला हो जाईदा है। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, वाहिगुरु जी का सिमरन करन नाल दुश्मन दुष्ट टर जांदे हन। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया कोई विघन नहीं पैंदा है, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया सुत्ता होया मन जाग जांदा है ते अपने स्वरूप विच स्थित हो जांदा है। प्रभ कै सिमरन भाव ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया मन भाव तो रहित हो जांदा है, निरभाव जपै सगल भाव मिटै। प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया मन और तन नूं कोई दुख नहीं हुंदा है। प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग। वाहिगुरु जी का सिमरन साध संगत विच आया हुंदा है। सर्व निदान नानक हर रंग, सब सुखां दी सार वाहिगुरु जी का नाम ही है। वाहिगुरु जी का नाम जपिया वाहिगुरु जी दे नाम विच मन रंगिया जांदा है।

प्रभ कै सिमरण रिद सिद्ध नाव निद वाहिगुरु जी दे सिमरण कीतियां रिधियां सिद्धियां नाव निधियां आप ही मिल जांदियां हन। प्रभ कै सिमरण ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध वाहिगुरु जी दे सिमरण कीतियां मन नूं ज्ञान हो जांदा है, मन दा ध्यान बनदा है ते मत विवेकशील हो जांदी है। प्रभ कै सिमरण जप तप पूजा प्रभ कै सिमरण विनसै दूजा। वाहिगुरु जी दा सिमरण ही जप है, वाहिगुरु जी दा सिमरण ही तप है, वाहिगुरु जी दा सिमरण ही पूजा है, वाहिगुरु जी दे सिमरण कारण ही मन विचों दुविधा दा नाश हो जांदा है। प्रभ कै सिमरण तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरण दरगह मानी। वाहिगुरु जी दा सिमरण करन नाल ही तीर्थां ते दान पुन ते स्नान दा फल मिलदा है।

सफल फला। वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाले सुते ही उन्हां कोलों सब दा भला हो जांदा है। वाहिगुरु जी दे सिमरन करन नाल ही उन्हां गुरमुखां दे सारे ही कर्मां नूं शुभ फल लगदे हन। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागों पाए। जिस ते वाहिगुरु आप नजरे कर्म करदे हन ओही गुरमुख प्यारे सिमरन कर सकदे ने। गुरु साहिब फरमाउंदे ने कि वाहिगुरु जपन वालियां तों असी सदके

अमृत नामरे दुमाय सुमाय प्रभु जी बसें साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु का सिमरन सब से ऊंचा वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाला सब तो उच्चा हो जाता है। प्रभु का सिमरन उधर है मूचा वाहिगुरु जी का सिमरन करने संसार सागर तो तर जाईदा है। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु का सिमरन सब किछ सुझे वाहिगुरु जी का सिमरन करने मन की तृष्णा शांत हो जाती है। वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया सब कुछ सोझी विच आ जाता है। प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूरन आसा वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया जम का डर नहीं रह जाता। वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया वाहिगुरु जी के दर्शना की आस पूरी हो जाती है। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माए समाए वाहिगुरु जी का सिमरन कीतिया मन की मैल उतर जाती है और वाहिगुरु जी का नाम हिरदे विच आके टिक जाता है। प्रभु जी बसें साध की रसना नानक जन का दासन दसना गुरु साहिब फरमाउंदे ने कि वाहिगुरु जी दे सिमरन करन वाले जड़े ने उन्हां दी रसना ते आ बैठदे ने वस जांदे ने। गुरुदेव फरमाउंदे ने असी उन्हां प्यारियां दे दासां दे दास होना लोड़दे हां वाहिगुरु जी साडे ते अजिही कृपा करो। प्रभु को सिमरै से धनवंत प्रभु को सिमरै से पतवंत प्रभु को सिमरै से जन परवान

प्रभु को सिमरें से तानवंते वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाले ही तानवान हो गए हैं। प्रभु को सिमरें से पतवंते वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाले ही बहुत उच्चे मान और इज्जत वाले हुए हैं। प्रभु को सिमरें से जन परवान प्रभु को सिमरें सी पुरख प्रधान वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाले ही वाहिगुरु जी के दर से प्रवान हुए हैं। ते वाहिगुरु जी का सिमरन करने वाले ही वाहिगुरु के दर से उच्चे पदवी वाले हुए हैं, उच्चे गुरमुख प्यारे बने हैं। प्रभु को सिमरें से बेमौता जे प्रभु को सिमरें से सर्व के राजे वाहिगुरु जी दे सिमरन करन वालियां नूं फिर किसे दी मुताजी नहीं करनी पई है। वाहिगुरु जी दा सिमरन करन वाले फिर मन जीत के सब ते राज करन वाले होए हन। प्रभु को सिमरें से सुख वासी प्रभु को सिमरें सदा अवनाशी वाहिगुरु जी का सिमरन करने वालियां दा सदा ही सुखा विच वासा होया है। वाहिगुरु जी का सिमरन करने वालियां दे मन विच सदा अवनाशी प्रभु वस गए हन ते इस कारण ओ स्थिर हो गए हन। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगर वाला वाहिगुरु जी ने जिन्ना गुरमुखा ते दया मेर करके नाम दी दात बख्शी है उना प्यारियां ने ही वाहिगुरु जी दा सिमरन कीता है। गुरदेव फरमाउंदे ने असी उना प्यारियां दी चरण तोड़ मंगदे हां भाव सेवा सिमरन विच रहना चाहुंदे हां। प्रभु

प्रभ के सिमरन कार्य पूरे वाहिगुरु जी का सिमरन करन वालियां दे सारे कार्य पूरे हो जांदे हन। प्रभ का सिमरन कभू ना झूरे, वाहिगुरु जी दे सिमरन करन वाले कदी अपने जिंदगी विच पछताउंदे नहीं हन। राम सिमर पछताएगा मन, पापी जीरा लोभ करता है आज काल उठ जाएगा। प्रभु कै सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु कै सिमरन सहज समाणी। वाहिगुरु जी दे सिमरन करन वालियां दी बाणी मिठी ते अमृत जैसी हो जांदी है। प्रभु कै सिमरन सहज समाणी, वाहिगुरु जी दा सिमरन करके ही मन सहज विच टिक जांदा है। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। वाहिगुरु जी दा सिमरन कीतियां ही मन अडोल हुंदे ते अपने स्वय स्वरूप आत्मा विच स्थित हो जांदा है। प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, वाहिगुरु जी दा सिमरन करन नाले मन विच वाहिगुरु दे नाम दा खेड़ा पैदा हुंदा है। प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार। वाहिगुरु जी दा सिमरन करन नाल ही मन देही तो परे होके माया तो निर्लेप हुंदा होया बेअंत वाहिगुरु दे स्वरूप स्थित हो।

के परम आनंद नु मानने वाला हो जाता है। सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, अजिहा सुख उन्हां गुरमुखां नु प्राप्त हुंदा है जिसका अंत और पारावार नहीं है। ओ सुख आत्मा दे मिलन दा सदीवी ही बनिया रहिंदा है। सिमरै सी जन जिन कौ प्रभ मया, हे वाहिगुरु जी जिसते तुसी आप दया मेर कर दे हो, उही गुरमुख प्यारे अयो सिमरन करके इस सुख नो प्राप्त कर दे हन। नानक तिन जन सरण ही पया, गुरु साहिब फरमाउंदे ने असी जीव इहा जे प्यारियां दी संगत विच रहना चाहुंदे हां।

हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। वाहिगुरु जी का सिमरन करके ही भगत जगत विच प्रसिद्ध होए हन। हर सिमरन लग भेद उपाए, वाहिगुरु जी का सिमरन करन कारण ही वेदा ते सिमरतियां दी रचना होई है। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंठ जाते। वाहिगुरु जी का सिमरन करन वाले ही सिद्ध जति ते दान करन वाले बड़े बड़े दानी महापुरुष हो गए हन। हर सिमरन नीच चौं कुंठ जाते, वाहिगुरु जी का सिमरन करन वाले नीच जाति दे भी चारा कुंटा विच प्रसिद्धि पा गए हन। हर सिमरन धारी सब तरना, वाहिगुरु जी ने हरि सिमरन करन वास्ते ही ए धरती भी साजना कीती है। सिमर सिमर हर कारण करना, हे जीव धरती ते तेरा जन्म उस वाहिगुरु जी दे नाम जपन लई होया है। हर सिमरन कियो सगल अकारा, ए जगत दी रचना वाहिगुरु जी ने आप ही कीती है। हर सिमरन में आप निरंकारा, जिथे वाहिगुरु जी का सिमरन हुंदे, जिथे साध संगत जुड़दी है, उथे वाहिगुरु जी आप हाजर नाजर हुंदे हन। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। हे वाहिगुरु जी, जिससे आप दया करदे हो, अपने आप दी जिसनु सोझी बख्शदे हो, उस प्यारे नु गुरु दी कृपा नाल सिमरन करन दी सोझी आ जांदी ए।

हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरी नानक पावो सुख कनेरी। गुरु साहिब गुरु अर्जन महाराज जी इस श्लोक विच फरमाउंदे हन, हे दीना दे दर्दां दी निवृत्त करन वाले वाहिगुरु जी, आप घट घट वासी हो, मैं आप दी शरण विच आया हां। हे वाहिगुरु जी, मैनू नाम दी दात बख्शो तां जो मेरा उधार हो जावे। दीन दर्द दुख भंजना

अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। ये मनुख जन्म वाहिगुरु जी दे सिमरन करन वास्ते ही प्राप्त होया है। मनुख देही जदों छुट जांदी है ते मन ने कीते कर्मां दा हिसाब धर्म राज दी कचहरी विच देना हुंदा है। मौत तो बाद ए जीव अपना हिसाब देने वास्ते इकलिया ही जांदा है। उस समय दा जिक्र सतगुरु जी करदे हन, जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जदों जिथे तेरे माता पिता पुत्र धिया मित्र नाल नहीं जानगे, जिथे तेनु इकला ही जाना पवेगा, उथे वाहिगुरु दा नाम ही तेरा साथी होवेगा, सहायता करेगा।

जय मुश्किल होए अतपारी, हर को नाम खिन माए उधारी। जिस राह विच अनेका ही विघन तैनू घेर लैणगे, उथे केवल वाहिगुरू दा नाम ही तैनू उधार करेगा, तैनू सुखदाई होवेगा। अनक पुन चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। जिथे कीते होए पुन दाना दा फल तैनू छुड़ा नहीं सकेगा, उथे वाहिगुरू जी दा नाम ही तेरे कीते होया पापां दा खंडन कर देवेगा।

ऐ प्यारियो गुरु के सिखो गुरु दी आज्ञा विच वाहिगुरु जी दा नाम जपो ते अनंत सुखा नु प्राप्त कर लवो। सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत

गुरुमुख परम गत पाइए। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, सृष्टि विच राजा सब तो दुखिया हुंदा है। हर का नाम जपत होए सुखिया, ऐसा राजा जो अत्यंत दुखी है, ये वाहिगुरु जी का नाम जपे तो सुखी हो सकता है। लाख करोड़ी बंधना परे, हर का नाम जपत निस्तरे। लखा करोड़ा रुपए रखन नाल भी जिथे मन शांत नहीं हुंदा, उथे वाहिगुरु जी का नाम जप के मन आत्म वाला हो जांदा है, तृप्त हो जांदा है, सुख शांति वाला हो जांदा है। अनक माया रंग तिखना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जिथे माया दे रास भोग मन नु शांत नहीं करदे हन, मन अतृप्त ही रह जांदा है, उथे वाहिगुरु जी दा नाम जप के मन रज जांदा है, तृप्त हो जांदा है। जे मार्ग ई जात वकेला, ते हर नाम संग हो तो सुहेला। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते इने इकलिया ही जाना है, उथे वाहिगुरु जी दा नाम ही सुखदाई है। ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरमुख परम गत पाईए। गुरु साहिब जी फरमाउंदे ने, अजिहा सुखा देन वाला नाम मन में सदा ही रखना चाहिदा है। नानक गुरमुख परम गत पाईए, जिस नाम दे जपन दी बदौलत परम मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी है। छूटत नाही कोट लख बाही, नाम जपत तैं पार पराही। अनक बिघन जय आए संहारे, हर का नाम तत्काल उधारे। अनक जा

मत होवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइए साधु की संग, छूटत नाही कोट लख बाही। किन्ना भी बाहां विच बल होवे, मन और तन विच बल होवे, जम दूध दी मार तो ये छुट नहीं सकता है, बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। नाम जपत तैं पार पराही, वाहिगुरु जी का नाम जप के परम गति नूं प्राप्त हो जाईदा है। अनक बिगन जै आए संगार, जिथे अनेकां ही विघन तैनू आके पकड़ लैणगे, जकड़ लैणगे। हर का नाम तत्काल उधारे, वाहिगुरु जी दे नाम दी उथे तैनू सदा ही सहायता होवेगी। अनक जाऊं जन मैं मर जाऊं, नाम जपत पावे विश्राम। अनेकां जूना विच ए जीव जन्मदा है ते मरदा है, केवल वाहिगुरु जी का नाम जपन नाल ही इसनों सुख शांति मिलती है, जन्म मरण तो रहित हो जाता है। अनक जाऊं जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ मेरा मल कबू ना तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। मन दी मैल खोटी मत दे कीतियां होया कर्मा नाल हुंदी ए, ते हाँ करके ए जीव मैला है। वाहिगुरु जी दा नाम जे जपे ता ए पापा रूपी मैल जड़ी ए ओ साफ हो जांदी ए। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध कै संग। अजिहा वाहिगुरु जी दा नाम गुरदेव जी फरमाउंदे ने, प्यार नाल जपो पाई, ते एहजिहा वाहिगुरु जी दा नाम गुरमुखां प्यारियां दी संगत विच रह के सेवा सिमरन द्वारा ही पाया जा सकदा है। जे मार्ग के गए जाए ना कोसा,

हर हर अमर तुबर खैम। जे मार्ग के गने जाए ना कोसा, जिड़ा मार्ग बहुत लंबा है, मृत्यु तो बाद जिस मार्ग के इस जीव नु इकलिया ही जाना पैंदा है, हर का नाम ओहा संग तोसा, उठी वाहिगुरु जिदे नाम दा ही तैनु उदार होवेगा, भोजन होवेगा। जय पेंडे महा अंध गुबारा, जिस रस्ते से कोप अंधेरा है, हर का नाम संग उजियारा, वाहिगुरु जी दा नाम ही उथे चानन होवेगा। जय पंथ तेरा को ना सियानो, हर का नाम ते नाल पछानो, जिस मार्ग ते तैनू कोई पछानने वाला जानने वाला नहीं होवेगा, उथे वाहिगुरु दे नाम जपन करके ही तेरी पछाण हो जाएगी। जय महाप्यान तप्त बहु काम, तै हर के नाम के तुम ऊपर छाम, जिस भयानक मार्ग से बहुत तपश और गर्मी होवेगी, उस स्थान से वाहिगुरु नाम दी ही तैन छाया मिलेगी। जय महाप्यान तप्त बहु काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जय त्रिखा मन तुझ आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत वर्ष है, जिस रस्ते ते चलिया मन नु बहुत प्यास लगेगी, उथे वाहिगुरु दा अमृत रूपी नाम ही अमृत रस होके तेरे मन दी प्यास नु बुझा देवेगा। ताते गुरु साहिब फरमाउंदे ने, प्यारियो गुरु सिखो, वाहिगुरु जी दा नाम प्रेम नाल जपदे रहना। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उतरे जन कोट, हर जस करत संत।

भगत जना की बरतन नाम, भगत जना दा भगती करन वालेयां दा व्यवहार ही नाम दे कारण हुंदा है। संत जना के मन विश्राम, संतां महापुरुषां दे मन विच वाहिगुरु दे नाम दा वास्ता हुंदा है। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट। तेरिया दासां दा वाहिगुरु जी थोड़ा नाम ही ओट है ते आसरा है। हर के नाम उदरे जन कोट, करोड़ा ही तेरे दास तेरे नाम दे जपन कारण पाव सागर तो तर गए हन। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कुमात। हे वाहिगुरु जी तेरिया प्यारिया ने दिन और रात स्वास स्वास तेरा प्यारा नाम ही जपया है। ते वाहिगुरु जी वाहिगुरु नाम दी औश दे तेरिया प्यारिया संता ने ही साधुआ ने ही दिन और रात नाम दी कमाई कीती है। हर जन के हर नाम निदान, तेरे प्यारियां दे कोल तेरे नाम दा ही खजाना है। पार ब्रह्म जन की नो दान, हे वाहिगुरु जी तुसी आप ही उठ के अपनी भगती करन वालियां प्यारियां नू ए नाम दी दौलत नाल निवाजिया है। मन तन रंग रते रंग इक, नानक जन के बिरत बबेक। गुरु साहिब समझाउंदे ने जिन्हां दा मन और तन वाहिगुरु जी दे नाम रंग विच रंगिया गया है उन्हां दी बिरती बबेक वाली हो गई है। ओ सत दे धारनी होए ने ते पाप और पुन दी कर्म तो अलग होके वाहिगुरु नाम विच स्थित हो गए हन। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे ना भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन का भोग जोग, हर नाम जप

सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिज बस संत प्रताप दुर्त सब नस संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए पार जात इहो हर का नाम पार जात इक वृक्ष नूं कही गए जो प्राण दे अनुसार स्वर्ग विच हुंदा है। सतगुरु जी समझाउंदे ने इह पार जात वृक्ष दे कोल आया सारियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां जीव दियां तां ते ही वाहिगुरु जी आप जी दा पवित्र नाम ही पार जादा वृक्ष है सारियां इच्छावां पूरियां करन वाला है। काम तेन हर हर गुण गावा दूजा काम तेन गऊ हुंदी है जिहदे कोले गां हुंदी है ओहदियां सारियां मनोकामना इच्छावां अपने आप ही पूर्ण हुंदियां जांदियां ने। तां ते गुरु साहिब जी इह समझाउंदे ने कि हे वाहिगुरु जी आप दा पवित्र नाम ही काम तेन गऊ है जिहदे जपण कारण सारियां मन दियां मुरादां पूरियां हो जांदियां हन। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा हे वाहिगुरु जी आप दा नाम अकथनिया है आप दे प्यारियां ने ही नाम दा अनुभव करके आप दी कृपा नाल आप दे स्वरूप नो रसना राही कथन कीता है। जिन्ना प्यारियां ने संता महापुरुषां दी अनुभवी कथा सुनिए वाहिगुरु जो अकथनियां हन उन्हां दी कथा जिन्ना गुरमुखा प्यारियां ने सुनिए वाहिगुरु दा नाम सुन कारण उन्हां दे मन दा दुख ते तन दा दुख दूर हो गया है। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत

0: हे वाहिगुरु जी, आप दे नाम दी महिमा ते आप दे प्यारियां दे मन विच ही वसदी है, क्योंकि आप दे प्यारे दिन और रात आप दा पवित्र नाम जपदे ही रहिंदे हन। जिन्हां सास ग्रास ना विसरे हर नामा मन मंत, तन ते सेई नानका पूर्ण सेई संत। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। वाहिगुरु जी, आप दी महिमा आप दे प्यारियां दे मन विच वसदी है, ते आप दे प्यारियां दी संगत विच जड़ा जीव आउंदा है उस दे मन दा दुर्मत नाश हो जांदी है, ते गुरमत धारण करके ओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपदा है, ते नाम जपन कारण उस दा भी उद्धार हो जांदा है। संत का संग वडभागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है। अजहे महापुरुषा संतां दी संगत ते वड्डियां भागां वालियां नूं आप दी कृपा नाल ही प्राप्त हुंदी है, ते जे कदे जीव दे उच्चे भाग होण अजहे संतां महापुरुषां दी संगत ते सेवा दा समा मिल जावे, तां ओ जीव वड्डियां भागां वाला हुंदा है, ते ओनू सदा वाहिगुरु दा नाम ही चित आउण लग पैंदा है। नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। तेरे प्यारियां संतां ने नाम जप जप के ए वस्तु पाई है कि नाम जपन दे बराबर होर कोई सुखदाई नहीं है। नाम ही सत है, नाम ही सुख देन वाला है। तांते गुरु साहिब फरमाउंदे ने, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। कोई विरला ही गुरु का प्यारा गुरु दी आज्ञा विच रह के नाम जप के नाम दी दौलत नूं हे वाहिगुरु जी आप दी दया मेर नाल प्राप्त करदा है।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग टू CISK सिख रेडियो 94.3 FM ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न सिंह सभा गुरुद्वारा इन विलियम्स लेक ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Tusi sun rahe ho Sikh Radio 94.3 FM. ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singsabha2@gmail.com singsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ठाकुर पाए ए जग हरिया ठाकुर पाए बसंत चढ़िया फूल बसंत चढ़िया फूल।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.
3: Raj Gauri Dwareri Mehla Pehla Chauk De Duk De

मनमत हौली बोले बोल, सिर पर चलिए सही है पार, नजरी करमी गुरबीचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार, रहाओ तै तन अगन पखे पै नाल, तै पौ पढ़िए शब्द सवार, तै बिन कारच कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सट। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह सियाणप पवै न पाओ, नानक मन मुख बोलन वाओ, अंधा अखर वाओ दुआओ। गौड़ी महला पहला, डर कर कर डर, डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाहीं जाए, जो किस वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किस किया सो किस करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसा समान, तिस विच भूख बहुत नैसान,

ब्राह्मण कर मन लय साहा संजोग वियाहो विजोग सत संपत कहो नानक जोग गौड़ी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार गुजरे ज्ञानी यो विचार कत्ता बकता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव देही माटी बोले कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद अंकार ओ नाम हुआ जो देखन हार जय कारण पट तीरथ जाही रतन पदार्थ पट ही माही पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने पीतर हो दी वक्त न जाने ओ नाम हुआ मेरी मुई बलाए ओ नाम हुआ जो रहा समाए कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया मरता जाता नदर ना आया गौड़ी मेला पहला दखनी सो सुन बूजे माने नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ आप खुलाए खौर न खाओ तू समझावे मेल मिलाओ नाम मिले चले

कोट, काम क्रोध जी मैं चोट, नाम विसार चले मन खोट। साचे गुर की साची सीख, तन मन शीतल साच परीख। जल पुराण रस कमल परीख, शब्द रते मीठे रस ईख। हुकम संजोगी गर दस द्वार, पंच वसे मिल जोत अपार। आप तुले आपे वनजार, नानक नाम सवारन हार। गौड़ी महला पहला, जातो जाए कहां ते आवे। कह उपजे कह जाए समावे, क्यों बांधियो क्यों मुक्ति पावे। क्यों अविनाशी।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरुमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह विस्तार है कर्म लिख्यास, नाम संजोगी गोयल ठाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सूनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए, गौड़ी महला पहला।

वाहो वाहो साचे मैं तेरी टेक, हों पापी तू निर्मल एक राव, अगन पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिस्त विकारी नाही पाओ पाओ, आप मारे ता पाए नाओ, शब्द मरे फिर मरण न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण परे सो होए, बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार, गौड़ी महला पहला, उल्ट्यो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आत्मुरार, रे मन मेरे परम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ, जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अधिक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नाही को थाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, नानक गुरमत सहज समाओ, गौड़ी महला पहला, सतगुरु मिले सो मरण दिखाए, मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगन पुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुरु मिले तब दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रब लागे, जीवत मरे महारस आगे, सतगुरु मिले सत संजम सूचा, गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा, कर्म मिले जम का पौ मूचा, गुर मिले मिल अंक समाया, कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हो मैं मार मिलाया, गौड़ी मेला पहला, किर्त पया नह मेटे कोए, क्या जाना क्या गए होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर ना करने वाला दुआ, ना जाना कर्म केवड़ तेरी दात, कर्म तर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड़ दाता देवन हार, तोत नाही तो

नाम जपाए तू दाना बीना साचा सिर मेरे गुरमत दे परोसे तेरे तन में मैल नाही मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत शरणाई गौड़ी महला पहला जिन अपथ कहाया अपियो पी आया अन पै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुभाए मिले सावास जाए सवारे सांझ बिहाल इत उत मन मुख बांधे काल एनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले परम दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे।

जान राम भगत गुर सेवा करना बाहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाओ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहे निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एह संसारो लग लोग मुझ कूड़ कमावे बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों तर ऊपर छारो सुन सुन सिखा।

निंदा चिंदा करें पराई, झूठी लाए तवारी। वेल पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियारी। हंस चलिया तू पिछे रहिए, छुट्टर होई है नारी। तू काया रही है सुपनंतर, खुद क्या कर्म कमाया। कर चोरी में जा किस लिया, कामन पल्ला पाया। हल्त न सोबा पल्त न टोई, एला जन्म गवाया। हौ खरी दुहेली होई, बाबा नानक मेरी बात न पूछे कोई। रहाओ ताजी तुर्की सोना रूपा, कपड़ के रे भारा। किसी नाल न चले नानक, चढ़ चढ़ पे गवारा। पूजा मेवा में सब कुछ चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा। दे दे नीर दीवाल उसारी, पस मंदर की तेरी। संचे संच ना दे किसी, अंध जाने सब मेरी। सोइन लंका सोइन माड़ी, संपे किसे न केरी। सुन मूरख मन अजाना, भोग किसे का पाना। रहाओ साओ हमारा ठाकुर पारा, हम किसके वन जा रे। जियो पिंड सब रास किसे की, मार आपे जी वाले। गौरी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीच नीच। किस आगे करी पुकार जना।

अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मनाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वास्थ्य आस बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन सित कवन वार कवन सिरुति महा कवन जित आकार वेल न पाइया पंडती जेहु बलेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत महा न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई किव कर आखां किव सलाही क्या वरनी किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा बड़ा साहिब बड़ी नाई कीता जा का होवे नानक जी कहो आप जाने अगे गया ना सोहै पाताल ना पाताल लख आगास आगास कोड कोड कपाल थके वेद कहनिक वात सहस अठारह कहनिक देबां सलू इक धात लेखा होए तो लिखी है लेखा होए विनाश नानक बड़ा आखी है आपे जाने आप सालाही सलाह इति सुरद न पाइया नदियां तै बह पवह समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरह सेति माल तन कीड़ी तुल न होबनी जे तिस मन हो न विसरह अंत न सिवती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत

गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारी गावे खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तारे

सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पियो सी जय नजासी रचना जिंद्र चाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर वेखै कीता प्रणाम जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाह श्याम पात साहेब नानक रहण रजाई मुंदा संतोख शर्म पद चोली ध्यान की करें बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत है जग जीत आदेश स आदेश आदे नील आदे नाथ जुग जुग एक भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वजह नाद आप नाथ नाथी सब जैकी हृदय देवरा साध

जुग जुगे कोवेश एका माई जुगत व्याई तंजले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवाण जब तस पावे तब चलावे जब हो वह प्रमाण।

आदेश तिस आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी पौ लख हो है लख है लख वीस लख लख गिड़ा आखियां एक नाम जगदीश ए तरह पत पबड़ियां चढ़िया हुए अखीस सुन गला आकाश की गीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ ठीस आखण जोर चुपै नह जोर।

नानक उत्तम निज ना कोई। राति रुति स्थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस वे धरती थाबर।

पावन गुरु पाणि पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वच

कर्मा परमा जीता पीता है। अबहाय गहाय मान अनदान नहीं गाय बरी गाय भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्व मान्य समाज दीन दाने नमो देव देवे अभेखी अभेवे नमो कल काले नमो सर्व बाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो रू नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूप प्रभंगी परमाथे समाधि भूते कलंकार रूपे अलंकार कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राजेश्वरं परम रूपे नमो योग योगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजेश्वरं परम हृदय नमो शस्त्र पाणी नमो वस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाह नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो दांत्र दांत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समाज तुल निवासी सदा सिद्ध द बुद्ध द वृद्ध करता दूरदर्दंग गंगोग हरता परंग परम परमेश्वरंग पुरुष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदीय प्रेदीय नामंग कामंग स्वस्तु ब्राजी समस्ता सतामंग तेरा जोरजा श्री संग जरयां थलयां पीता व्यय प्रभु अजुआ देश पेशाय भुजंग प्रयात संग अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दीन दानी नमास्तवंग नरनाथे नमास्तवंग परमाथे नमास्तवंग गंजे नमास्तवंग पंजे नमास्तवंग काले नमास्तवंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व भेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साजाय नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वयंत्रं नमो सर्वदृष्टं नमो सर्वग्रेशं नमो सर्वरंगे सर्वंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे नमो राज संग दाम संग शांत रूप नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समातं प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्ध निवासी जरपट छंद प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद तव प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्ति जोन पुरख पारु सर्व मान त्रमान देवा बेबाद उदारु सर्व पालक सर्व काल पूज सर्व गोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्त जोन आद शेख देश और न पेश जा कर उपरेख न राग जत्र दत्र दिशा विशा हो फैल अन राग नाम कामीन बेगत तामू न जाई सर्व मान सर्व धर्मान सदैव मान तथा ही एक मूर्त अनेक दर्शन केन्द्र रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अंत को ब्रेक देव पेव न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात बासु जानी गह जे बहुत आत्मात न जात जा करु जन्म मरण विहीन चकर बकर फिरा चदर जाको मानी परतीन लोक चौदह के विखय जग जाप जय जाप आदि दीवन आदि मूर्त थप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्वर च्यो सुयम पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्मताम सुपरम रहत भूतल खपेश
अंगरागन रंग जय कै जात पौधन नाम गर्भगंजन दोष्ट पंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमी का नुत एक पुरख दूत गर्भगंजन सर्व पंजन आदरूप सूत अंगहीन पंगन आत्मयुग पुरख पारु सर्वलायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व दीन पेख सर्व स्वास्थ्य न जानी जय रूप रंग अर देख परम वेद प्राण जा कहे नेत पाल सनित कोट सिमृत प्राण शास्त्र कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवई वाचित मद पार शांत।

प्रतिष्ठाधिष्ठा दृशा कृष्ण भगवती शांत प्रसाद कथ दे किया सज देसा क्या बज बेसा क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या बज लोक है क्या दत सुख है क्या बतूत वर्ण है क्या भूत करण है कि राजम प्रभा के धर्मम तो जाए कि अशोक वर्ण है कि सर्वा वर्ण है कि जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है ज्ञान पानुप है कि आदि देव है कि आप पेव है।

निरुक्त स्वरूप त्रिभुवत भूत है प्रभुत प्रवाह सुजोत सुधाय सुधागुण स्वरूप वेदी अनूप है समस्तु प्राज सर्वसाज समस्तु स्वाम सवल काम निर्वास स्वरूप गाज अनूप ओंगाद रूप नाश स्वरूप अनंगी नाम त्रिभंगी त्रिकाम त्रिभंगी त्रिवर्ग त्रिवादी अगंजे गादे शुभंग सर्वभाग्यस सर्वानरागेश त्रिभुग स्वरूप सज सूत नरक प्रणाश पृथ्वल प्रवास निरुक्त प्रवाह सुधा गुण सदा है विभुत स्वरूप प्रजोत अनूप है निरुक्त सदा है विभुत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप प्रजोत अनूप है जा श्री संग अपंग है नंग है बेघ लेख है ब्रह्म कर्म नाद गाद है जय

राधे आकाश रूपेन्द्र बाल भूते अनंगी रामेन्द्र भगंगी दृगाले अनंगी स्वरूपे त्रिभंगी स्त्रभंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न रसाक श्री कह तुम ही कहे सदैव प्रवाहे अजय अजाहे भगवती शांत प्रसाद के जार जूर है के हाजर हजूर है हमेशा सलाम है समाज तलकलाम है के साहब दिमाग है के उदन चिराग है के काम लकरीम है के राज करीम है के रोजी देंद है के राज करेंद है करीम अल कमाल है के उदन जमाल हम जमाल है गनीमल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल सिकन है रात लिप कन है अगलंक प्रणास है समाज तुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करीम है समाज तुल जवा है कि साहब गिरा है गणक प्रणास है वैस तुल निवास है कि सरवल गवन है हमी सुल रवन है तमामल तमीज है समाज तुल अजीज है पारंग परमीश है समाज तुल अधीस है अधीसल अलीख है मी सुल भीख है जमीनो जमा है मी कुल माह है गरीमल कमाल है कि चरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मित्र सुभाष है कि अज विस्वरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो पसा है क्या तुम प्रभा है कि अचरंग नांग है कि मैं तो भंग है मद पार छंद तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गुरु गण बदाम हर भर गंज हर नर पर भंज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर मंड अन पवनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मदामे अंश जे अंग आसन भंग उपमा पार गात उदार जल थल मंड दिस विस पंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुपवनाश उदृत तर तरार त्रास आजान बाह कैसदाह ओंकार आदि कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरु भर काल कर कर प्रणाम जरन नाम अंश जगात अज जन बात अंजन जगात अंदर पात अंठ पंड

पारण है, कृत के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्ववास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, जप जप है, जप तप है, कृता करता है, मृता मृता है, करुणा करता है, कृता करता है, धरणी धरत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, मृता मृत है, जबा कृत है, मृता मृत है, निर्नायक है, कल गायक है, विश्वम पर है, करणालय है, निरपनायक है, सर्वायक है, पवपंजन है, अरगंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, अर्धार है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो

याचकनेक सो एक दवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत वैकप वान जपेंगे जी जो ते जल में सल में बाली बल में सब धाप धपेंगे पुन परतापन बार जैत तुन बापन के भव पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अब लोग जपेंगे मान अवेंद्र गजेंद्र निरात अब जौंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गण अधिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचि पद अंत फलेजम भास भरेंगे जे नर सरिपद के परसें भाग दे नर फिर न दे तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ भगत ध्यान लगायो नहा।

रहे हो सब है, साच गाँव सुन लो सब है, जन प्रेम की ओदनी प्रभ पायो, गाहू ने बहन पूज रहे सिर, गाहू ने रिंग लटकायो, गाहू ने व्यवहार वचिर समय, गाहू पूछा को सुनवायो, और कर और जो सब श्री सभी

ठाकुर साहस पातशाही दसवीं कवि बाज बेनती चौपई हमरी करो हारद रक्षा पूर्ण हो चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पार हमरे दोष्ट सब तुम काबहो आप हारद मोहे बचाव सुखी वसै मोर परिवार सेवक सिख सब करतारा

पुरुष जगन पग परे दिहारी तिनके तुम संकट सवटारी जो कल को एक बार त्याए है ताके गाल निकट नहीं आए रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट रष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्टि तन जाय निहारे हो ताके ताप तन कमो हरे हो।

आगमा गोचरा तेरा अंत न पाया अंत न पाया किने तेरा अपना आप तू जान हे जी जन सब खेल तेरा क्या को आख बखाण हे आख दिखे सब तू है जिन जग तो पाया कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नारे मुन जने अमृत घोष दे सु अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया जी जन सब दुद पाए एक वेख परसन आया लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप दुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाल निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना लभ लोभ अहंकार दाई दर्शना बहुत नाही बोलना खन्यो देखी वालो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जनी आप धजया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली ज्यों तू चलाए दिव चलना स्वामी होर कह जाना गुण तेरे जेव तू चलाए दिव चलना जन्ना मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे जिसनों कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहिब ज्यों पावे दिव चलावे एह सुहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया हे दिन कै मन वस्या जिन तुरों लिखया आया एक फिरे कनेरे करें गल्ला गली कने ना पाया कहे नानक शब्द सुहिला सतगुरु सुनाया पवित होए सेजना जिनी हर दया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित सिंह पवित संग सवाईया कहिंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन बसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर त्याया कर्मी सहज न उपजै बिन सहज सहस न जाई न जाए सहस कित संजम रहे कर्म कमाए सहसा जीव मलीन है कद संजम तो जाई मन तो बो शब्द लाग वारस रहो चित लाए कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो त मैले जनी जन्म जुए हारिया ए दिसना वडर लगा मरण मर वसारिया बेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेदा लिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल भारो निर्मल भारत निर्मल जियो निर्मल सतगुरु।

शिव सकत आप भाई कह करता आपे हुक्म बरदाए, हुक्म बरदाए आप वेखे गुरमुख से बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनों आप करे सो होवे एक सियों लिब लाए, कहे नानक आप करता आपे हुक्म बजाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार न जानी, ततै सार न जानी गुरु बाजों, ततै सार न जानी ते ही गुणी संसार परम सुता, सुत्या रहन बिहानी गुर किरपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया।

इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सु हर मन ना बसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया कह नानके शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर से चित लाया हे नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जो तरी हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो

0: विस्मात अग्नि खेड़ विडाने
1: विस्मात धरती विस्मात खानी विस्मात साथ लगे प्राणी विस्मात संजोग विस्मात विजोग विस्मात विस्मात भोग
2: विस्मात विस्मात चला विस्मात दूध विस्मात रहा विस्मात नेड़ा विस्मात दूध विस्मात देखे हाजरा।

नानक निर्भोरंकार हो केते राम रुवाल केतिया कण कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिड़मिड़ पूरे तार बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लख तक्या के मुदले

0: अंडज जेरी पूजा खाई तेत जा शोभित जाने नाल साधरा मेरा चंता
1: नाल दुखाए का समल सुना जिन करते कुना के चिता भी करेंगा जो करता चिंता कराए रे जिनों को आया जग तिस द्वारी सोसी सुपान पग नाल सच्चे नाम बिनो

पौड़ी सच्चा साहब एक दिन सचो सच बताया जितू दे मेरे सहायता तेने सच कमाया सच मिलिया सच पाया जिनका हृदय सच बताया मूर सजना जाने मन मुखी जन गवा

मध्य टेका तेरसोती का खाई हथ पूरी जंग का खाई नील वस्त्र पहरोए प्रमाण मले साला तुझे प्राण पाख्या का बच्चा बकरा खाना चुप के बच्चे न जाना देखा है चौका कभी कारू पराए बैठे कुड़े यार मत पिचाए भी मत पिचाए यो अंत

0: परत रहा परतन रूप कन्नी तू दुकान पहला तुम्हारी काय नानक संता तुम्हें बदे जमपुर जाए महला पहला
1: सबो सुनत भरम है तुझे लगे जाए जमण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पितर है दे तोंड सिखसन दाहे नानक जिनी गुरमुख पूजिया इना सुत गना
2: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਇਆ ਕਾਹੂ ਕਮਤ ਹਮ ਨਾਮ

0: लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी ना लेकर कलहरिया पैसा आपको आए सेवा करे तां पाए मान नानक सुनो लगा मिलन लगा सो परवार महला दूजा
1: जो दिन हो तो गए मौका के आवा पीछे भी तुम गए मत वे कोई नया महला दूजा
0: रानिया ने तो सुनी

0: एक नहीं बात आप से जो पाई है नान चाक महाराज साहब कुछ है जो मेरे महला दूजा
1: एक नहीं चाक भी
2: नान
1: जैसे

हर जन कै ओत सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। पोत पोत जन हर रस राथे, सुन समाद नाम रस माथे। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुकत बहु।

प्रतिपक्षियान योग अभ्यास क्रम धर्म क्रिया सरल त्याग बनव दे क्रिया अनेक प्रकार की ये बहुजतना पुण्य दान हो में बहुरतना शरीर कटाए हो में कर राति वर्त नेम कर भोपांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जप पिया एक बार नौ खन पृथ्वी फिर चिर जीव माँ उदास तपी सर थी वह अग्न माए हो मत परान कनक अश्व है वह भूम दान न्योली कर्म कर भव आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तौ पी हो मैं महल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन अर रात मन की मैल न तनते जात इस दही को बहु साधना करे मन ते कभू न भिख्या टरे

नहीं लावै। झूठा गुर सत सदा हजूरे ता कौ अंधा जानक दूरे। जाकी चहल पावै दरगह मान सहज सारै मुगद जान। सदा सदा यो भूलन।

पर हर चंदन ले पुतार धोए गर्दव प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेक अंतर मल माया छपच नाही कस कर छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्याप है लोक स्वान अंतर अग्न बार तन स्वाहा गल पाथर कैसे करे अथाह जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गै लोर निभावे कहां बुझारत बुझे डोरा निष्कही है तो समझे पोरा

लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब समाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया तेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जब जीवे हर के चरण। मिथ्या सर्वन पर निंदा सुनहे, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ ही रहे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर पुकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पए, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कह हो सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवतता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जहे तट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत आवर

अष्टपदी जय प्रसाद छति अमृत खाए तिष्ठा गुरु कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमृत परम गत पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पतंबर हंडावे तिसह त्याग कत अवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर कांका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती घर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिवलावो किस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी मन तिस प्रभु कहो कबू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राग परोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याए जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जय प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार

कै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सभूत निवेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहु धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।

साध संसार पर निस्तर साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग पय आज्ञाकारी साध संग दत पई हमारी साध

भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र नरत है विष्णु परीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम आत्म में सोधे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश।

पावे जन कोई कर कृपा अंतर उतारे पशु प्रेत मुक्त पाथर का उतारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कहूं जुगत कित न पाई धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसा नाम सत राम दास आत्म राम किस नगरी आया दास दसंतन पाए किन पाया

प्रभु की आज्ञा आत्महिता वै जीवन मुक्त सोग कहावै। ऐसा हरख तैसा उस सोग, सदानंद तै नहीं वियोग। ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी।

कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरथ निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सत्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूत धारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस्थामत सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अरसासत, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नानक प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जाख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेरे सबू ते दूर, नानक आप अलिपुत रहया भरपूर।

कहो मानुख ते क्या हुए आवै ज्योतिष भावै सोई करावे इसके हाथ हुए ता सब चले ज्योतिष भावै सोई करे अन जानत बिख्या मह रचै जे जानत अपने आप बचै परमे भूला दे दिसावै निमक माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक दे जन नाम मिले खिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जा कहु अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गनै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रात कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करण क्राम सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई पुनथियो कभू ऊंच नीच में बसै कभू

कबू नृत्य करै बहु भांत, कबू सोए रहै दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की होत रवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पेखारी नीत का साजा, कबू अप कीर्त में आवै, कबू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिन्ही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबू होए पंडित करे विख्यान, कबू मोन धारी लावै ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग होए दिया, अनक जोन परमै परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो प्रभ पावै तिवें नचावै, ज्योति

संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक मह पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सोभाते हीन, संत के हते कौ रखै न कोए, संत के दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक पी करै, संत के दुखन के मुख पवै, संतन के दुखन काग जोन लवै, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिगद जोन किरमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलै, संत के दुखन सब को छलै, संत

परमेश्वर मार संत का निंदक राज पे हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक कौ सर्ब रोग संत के निंदक कौ सदा बिजोग संत की निंदा दुख में दोख नानक संत पावे था उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी कौ दान लागे संत के दुखी कौ सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिखारी संत का दुखी जन्म मरै संत की दुख ना सुख ते तरै संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावै तां लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को ध्यान फरमाई है।

मछली तड़फड़ाए संता दो की भूखा नहीं राजा है, जो पावक इंधन नहीं त्रापै संता दो की छुटाए केला, ज्यो बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संता दो की धर्म ते रहत संता दो की सद मिथ्या कहत कीर्त निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थिया संता दो की बिगड़ रूप हो जाए संत के दो की कौ दर्जय मिले सजाए संता दो की सदा सहचाई है संता दो की न मरै ना जीवाई है संत के दोखी की पूजे न आसा संत का दोखी उठ चले निराशा संत कै दोख न त्रिटे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कट तिसके हो करने हार सदा सदा तिस पौ नमस्कार प्रभु की उसत करो दिन रात तिसे ते आवो साथ गिरास।

नानक दुख भरम पहु जाए। अष्टपदी मानुष की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रहे अघाए, भोर न कृष्णा लागे आए। मारे रखे को आप, मानुक कह कृष्णा ही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर।

ज्यो मंदर कौ था मैं थमन त्यों गुर का शब्द मनय अस्थमन ज्यो पाखाण नाव सड़ करे प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रगाश गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाँछो धूर।

तार जो कछ करे सोई सुख मान भूला ताहे त्रै अजान कौन बस आई तेरा संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया

कुर्बान सात सेवा वड़भागी पाई है सात संग हर कीर्तन गाई है अनक दिगंते साधु राख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक तें पाया मृतक कौ जीवा लनहार भूखे कौ देव आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माए पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओ करना जोग तिस दिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उस निर्मल हे करनी कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जा कै मन गुर की प्रतीक तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तिहु लोए जा कै हृदय को होए सच करनी सच ता की रहत सत हृदय सत मुख कहत

राजस्व वै सुप्रसन्न अष्टपति अविनाशी प्रभ मन मह राख मन सुखी तू प्रीत त्याग तिसते पर नाई किसकोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन इहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र पोर तिसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल सत जाकै सर्व थोक सुनिए करता कै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपी सिर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया जाकी दी लाकी मितना है सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम ते आवे से ते गुण में

करबनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नाल हरनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब पवन

रूप सत जाता सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाति बाणी सत पुरुष सब माय समाणी सत कर्म जाति रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए जिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन सत उपदेश सत तेजन जा के हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी तृप्त सुकरण हार अब

प्रभु जपी है, पी अमृत इहो मन तन तृपी है, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखा नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंत्र नाम है नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सद काम, बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभु अपने जन की नींदात, करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभु अपने सु रहे हैं समाये, जो हुआ हो सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पछाने, किसकी महिमा कौन बखानो।

मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श सब पाप मिटावे। और सगली छाड़, तिस जन की तू

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक कौ गुरु सदा दयाल। सिख की गुर गुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हल पल सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै। गुर के गृह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस कहो कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बेचै सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए ने कामी, तिस कहो प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर कहो बल जाओ। सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सहस स्यान प्रलया न जाई है, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर्घ है गवे। सुन कर वचन करण आघाने, मन संतोख आत्म पतियाँ ने। पूरा गुरु अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट देखै होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जिहवा एक पुस्तक अनेक, सतपुरुष पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुँचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै न पाई। अनक भगत बंधन नित करें, चरण कमल हृदय सिमरै। सत बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। इहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सोए। उस पुरख का नाही कर

जिस तन कौ चार कुंट उठताव है सो तन हसे वाते पाव है। जिस सुख कौ नित बाछ है नीत सो सुख साधु संग परीत। जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की करनी।

अनक पावना छूटन हारे सिमरत सास वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो हो तुम कौन सना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार अस हस्ती रथ सुवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बहु डूबे स्याने

जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर शोभ कहो किस है व्याप्त। जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होत परम। आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरुख कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज पाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत सरे तब कौन निडर कौन कत डरे। आपन चलते आप करने हार न

जब अभिगत या गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा।

पूर्ण पूर रहे दयाल, सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप, अंतरजामी रहो व्याप। प्रतपाल जीन बहुपांत, जो जो रचो सुख सहत्यात। जिस पावे तिस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मनया, करन हार नानक एक जानया। जन लागा हर एक नाए।

पहुंचनहार। सिर ऊपर ठंडा गुरपूरा, नानक साके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन के खत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक प्रवान, अंतर जामी पुरुष प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ता

सुने शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करम करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ के सगली उत्पत तिस भावे तां करे विस्तार तिस भावे तां एकंकार अनक कला लखी नहीं जाए जिस पावे तिस ले मिलाए कवन निकट कवन कहिए।

सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की माया सब कह मद अलिप तो रह जो किसना सुपिक है आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इससे हुए सो नाही बुरा और कहो किमें कछ करा आप भला करतूत अतनी की या पे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संग्राच ताकि गर्मित कही ना जाए दूसर होए तो सो जी पाए इसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक इहो जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह स्वाओ जन कै संचित आवे नाओ आप मुक्त

0: ਕਿਰਬੋਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
1: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha at Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
3: ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਕਵਾਲ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਵੇਦ ਤੇ ਕਿਤੇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਮਤ ਵੇਦ ਕਿਤੇਬਨ ਤਿਆਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭੈ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕੰਢ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਲੇ ਅਸਵਾਰਾ, ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਤੇ ਰਹ ਹੈ ਨਿਰਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਣੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦੈਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਖੋਸਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ, ਬੜੇ ਫਲ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫਲ, ਖਾਦਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਫਲ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸ਼ੂਰ ਲਓ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਲ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਲ ਹੀ ਫਲ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਝੁਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। गुरु जी का जवाब सी मरदानिया जो प्रभु की भगती करते ने ये फल प्रभु ने उन्हां वास्ते पैदा किए हुए ने ते ए बूटे इस वास्ते झुके हुए ने ए दसदे ने मरदानिया जे फल लग जावे ते झुक जाईदा है। जदों कोई धर्म नूं समझ लैंदा है फिर ओ नीवा हो जांदा है। ओदी अरदास वी हुंदी है मन नीवा मत उच्ची, मन नीवा हो जावे उच्ची मत प्राप्त होवे तां जो तेरे कदमां दी शो प्राप्त होई रहे, तेरे कदमां विच झुकिया रहां। पर इथे अभिमान हो गया से, अहंकार और बहुत ज्यादा अहंकार मन में ये ख्याल पैदा हो गया जे असी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे पास कीर्तन करदे आ ताई ते लोग उन्हां नूं गुरु समझदे ने। जे असी कीर्तन ना करिए, कई बारी साडे समाज विच भी ये ख्याल आ जांदा, कई बारी कीर्तनियां दे मन विच भी ये ख्याल आ जांदा, कई बारी कथाकारां दे मन विच भी ख्याल आ जांदा जे इस गुरुद्वारे असी कथा नहीं करांगे रौनक घट जावेगी। लखो श्री गुरु नू कोई फर्क नहीं, गुरु ते उदो भी गुरु से जदों सिख ओहदे कदमां विच सोना भेट करदे सन, हीरे भेट करदे सन, पारस भेट करदे सन। ओ आनंदपुर दे तखत उपर सुशोभित सी, जदों सारे चले गए उदो भी गुरु नू की फर्क पिया। लखो श्री गुरु नू कोई फर्क नहीं पिया, गुरु की महानता से अपनी ही है, वह पार ब्रह्म परमेश्वर है। जद जान वाले सोचते सन जे असी चले जावांगे तो शायद गुरु नू शिकस्त हो जाएगी, पर घर पहुंच के पता लगा नहीं असी हार गए, सानू शिकस्त हो गई है। गुरु तो जीतू है, गुरु तो जीतू है, गुरु नू जित हमेशा प्राप्त है। तेग रा फतह गुर गोबिंद सिंह भाई नंद लाल, गुरु तो जीतू है, असल विच असी हार गए हां, गुरु ते जीतू है, गुरु नूं जित प्राप्त होई। जिंदगी दी बाजी हारन वालियां ने महसूस कीता ते फिर खिदराणे दी ढाब ते जा के गुरु दे चरणां विच शीश भेंट कीते। ध्यान रखो गुरु नूं कोई फर्क नहीं, ओह माछूवाड़े दे जंगल विच भी बेपरवाहता दे नाल सन, कोई खौफ नहीं सी, कोई भय नहीं सी। पर इत्थे कीर्तनियां ने आख्या जे असी कीर्तन नहीं करांगे ते फिर गुरु नू कोई गुरु नहीं मनेगा, इउं कह के वो चले गए। कीर्तन करन वास्ते ना आए, बुलाया भी ता ना आए। जदों उन्हां ने गुरु घर दी निंदिया कीती ते हजूर ने सहजे बचन कीते, डूम फिट गए ने, डूम फिट गए ने, कोड़ हो गया। हुक्म सी कोई सिख इन्हां नू मुंह ना ला, कोई सिख मथे ना लावे, ते जेड़ा इन्हां दी सिफारिश करेगा वाहिगुरु दी दरगाह विच उहदा मुंह काला होवेगा और खोते उपर सवारी होवेगी। गुण अपने थां ते है पर वाहिगुरु दी बख्शिश अपने थां ते है। इसे लई सिख धर्म अंदर सिख नूं गुणी बनन दी थां थां ते प्रेरणा कीती गई है, पर नाल ए वी हुक्म कीता गया है कि वो गुण नू प्राप्त करके किते अहंकार ही ना बन जावे, अभिमान ही ना हो जावे। गुण प्राप्त करके समझे गुरु ने बख्शिश की, गुण प्राप्त करके समझे मैनु गुरु ने बख्शिया, ये गुरु दी दात है। कहंदे ने कोई सिख मथे नहीं सी लांदा, शरीर ते कोड़ हो गया, गुरु दे बचन तो केड़ा सिख है बदले। उंज बदलन वालियां दियां साखियां पहला भी आउंदियां ने ते हुण भी मिलदियां ने। प्यार लखो श्री हुण भी मिलदियां ने। अकाल तख्त साहब जी दा फरमान मनन वाले भी मिले ते जिन्हां ने इनकार करके चैलेंज कीता ओह भी अज भी मिलदे ने, अज भी मौजूद ने। और जेड़े सिर उच्चा करके ये कहंदे ने असीं नहीं परवाह करदे उदों भी सन। प्यार लखो श्री वाह गुरु हराय साहब जी ने वचन किया कि कोई भी गुरु का सिख राम राय नु गुरु करदा टका पैसा भेंट ना करे। टका दो पैसे, पैसा एक पैसा, गुरु जी का मतलब ते समुचे तौर ते सी कि लोग सिख संगत गुरु के हुक्म दी पालना करे। बाबा जी लाहौर आंदे जांदे सन, उन्हां दी काफी लाहौर विच मानता सी। लाहौर दे सिखां नूं भी हुक्म दा पता लगा ते उन्हां ने एक तरीका कढ लिया भी बाबा राम राय जी भी नाराज ना हो ते गुरु महाराज जी का वचन भी मनिया जावे। उन्होंने मिलके सलाह की थी ते कहन लगे गुरु हर राय साहब ने ए हुक्म कीता है कि राम राय नू टका जा पैसा भेट ना कीता जावे, आपां रुपया भेट करांगे। ओ बाबा राम राय नू रुपया रख के मत्था टेकदे सन प्याला खो श्रीवा। इउं हजूर ने हुक्म कीता, वचन कीते। जदों करता गुरु हर राय साहब जी नू पता लगा तां उस वेले महाराज ने लाहौर दी संगत नू कुछ वचन कर दिता, जिस दी बाद दी संगत ने खिमा मंगी प्यार ना खो श्री वाह। तो बेनती कर रहे सां, विचार कर रहे सां, कोई सिख मथे नहीं सी लांदा। फिर ए अखीर ते भाई लद्दा जी परोपकारी जी दे पास पहुंचे और उन्हां पास बेनती कीती। उन्होंने दरवाजे खोल दिते, सारा मामला सुनिया ते फिर कहन लगे चलो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे पास तुहानू बख्शाउंदे आ। बख्शाउण तो पहला हुक्म सी, उसकी पालना जरूरी है। भाई लद्दा जी ने एक गधा लीता है, ओदे ते सवारी कीती है ते एक लोह दी कालख नाल अपना मुंह काला कीता है, पिछे नू मुंह करके नाले ढोल धमके वालिया नू नाल लैके ओह लाहौर तो चले ने। जिस वेले श्री अमृतसर साहब गुरुद्वारा श्री मंजी साहब दे नजदीक जिथे हजूर दीवान चाहते सन पहुंचे, पता लगा तां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हुक्म कीता लद्दे नू ले आओ। भाई लद्दा जी आए, गुरु अर्जन देव जी ने गले लगा के भाई लद्दे नू क्या, आ भाई लद्दा तू पर उपकारी है। भाई गुरदास जी ने उन्हां दी पर उपकार दी जीवनी जिंदगी दी महानता नू समझ के गुरु अर्जन देव जी दे प्रमुख सिखां विच उन्हां दा नाम अंकित कीता। आ भाई लद्दा पर उपकारी, तू पर उपकार कीता है। भाई लद्दा तू जी आ जांदा इन्हां नू नाल लै के ते तैनू बख्श लैंदे, इन्हां नू बख्श देंदे, तेरी सिफारिश मंजूर हो जांदी। तो भाई लद्दा जी कहन लगे हजूर गुरु नानक देव जी दे घर दा हुक्म सभना लई को जे है, मैं मुंह काला करके इसलिए आया हां, खोते दी सवारी करके इसलिए आया हां कि किते परलोक विच मेरा मुंह काला ना हो जावे। तो धन गुरु अर्जन साहब कहन लगे भाई लद्दा नहीं, तेरे ते गुरु नानक देव जी दी कृपालता है, जेड़ा सिख तेरी सोहबत करेगा संगत करेगा गा ओदा मुख परलोक विच उजला होवेगा, तेरा ते उजला ही उजला है, तेरा ते साफ ही साफ। उसे गुरु अर्जन देव जी ने हुक्म कीता सी बड़े काम ने दुनिया विच, पर कार महा कर बे उपकारा। श्री गुरु प्रताप सूत ग्रंथ, पर उपकार दा काम सब तो महान है, पर उपकार दे समान होर कोई काम नहीं हो सकता। बेनती कर रहे सां, खोते दी सवारी सजा दी प्रतीक है, घोड़े दी सवारी चावां मलारां ते खुशियां दी प्रतीक है, पर दोनों उंज सवारी दे काम आउंदे ने, कद विच भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई बहुता नहीं। इसे ही तरह औरंगजेब भी एक बादशाह है, दिल्ली दे तख्त ते होर भी अनेक बादशाह हो गुजरे ने, पर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस औरंगजेब की मानसिक अवस्था नू, ओदे दिल दिमाग दे संस्कारां नू, ओदे विचारां नू अपनी कलम नाल लिख के उनू जो मुखातब कर रहे ने ओ सिर्फ दशमेश पिता जी ही कर सकते ने। आप बुजुर्ग हो, स्याणे हो, विद्वान हो, गुरु प्यारे यानी हरनाम सिंह जी चाकर बुजुर्ग विद्वान ने, परशियन उर्दू इना भाषावां दे ज्ञाते ने, समझदार ने, समझण वाले ने। रहमतुल्लाह अलैह शेख सादी ने गुलिस्तां विच एक बहुत सुंदर गल कही, ओ कहंदे ने अगर कोई बादशाह पोते माग दी रात दे 12 बजे दे ए कह देवे कि देखो सूरज चढ़िया होया है और दिन दे 12 बजे होए ने, ते फिर उथे की कहना चाहिए। वो कहो जी बिल्कुल सूरज चढ़िया होया है, बड़ी गर्मी है, बड़ी तेज धुप है, प्याला को यूं कहना चाहिए। बादशाह दी दे सन्मुख इंजी कहना बनदा है। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਏ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਲਟਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ।

निर्गुणियारेया सुब्रह सदा समाल जिन किया तिस जीत रख नानक निभी नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिन तू साज सिवार सिंगारिया गर्भगन मह जिन वारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पयाउ प्रसाग सैन मुख प्याउ बैठ कौ दैन एह निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श लिओ तो नानक सी जय जिह प्रसाद तारू पर सुख वसै सुत प्रात मीत बनता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव का मुला जे प्रसाद भोगै सब रसरा सगल समगरी संग साथ बसा दीने हस्त पाव कारण नेतर रसना तिस त्याग वरसंग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ़ देहु प्रव्यापे आदि अंत जो राखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जे को जाकी सेवा नवनद पावे तास मूड़ा मन नहीं लावे तिसह बसारे मुग्ध अजान सदा सदा ही पूलन हारू नानक राखन हार पार आद अंत जो राखन हारू तासो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिद पावै तासो मूढ़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बसारे मुग्ध अजान सदा सदा ही पूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो आस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन लेपो तारै तोए गर्तव प्रीत पसम संग होए अंधकूप मह पात तब करालो नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात बाहर पेखा अंतर मल माया शब शनाहे कस करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लो सुवान अंतर अगन बाहर तन सुहा गल पाथर कैसे तरे हथा जाकै अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लेह ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निस कहिए तो समझै पूरा कहाँ बिसन पद गावै गोंग यतन करै तो बिसुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तूहां उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा धरै संग सहाई सुभावे न चीत जो बहराई तास प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मने प्रतीत गाल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोह याहू जगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेह अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा मह सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सुतरत

श्लोक। देन हार प्रभु छोड़ कै लागै अनसुहाय, नानक कहू न सीजई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पीना दे दस पी हिर ले, तो मूढ़ा कहो कहाँ करे। जिस सागर सो नाहीं चारा, ता कहो कीजै सदनम शिकारा। जा कै मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सुख दाहू मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्ब सुख नानक तिन पाया। अगणत सा अपनी दे रास, खात पीत बरत आनंद उलास। अपनी अमान कछ भार साले, अग्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुत उसका विश्वास न होवै। जिसकी वास्ते तिस आज्ञा राखै, प्रभु की आज्ञा मन है माथै। उसते चौगुण करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनख भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया सब रंग लावै, उह बिनसै उह मन पछतावै। जो दिसै ऐसो चालन हारु, लबड़ रहो तह अंध अंधारु। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, तां कहो हास न आवै के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सुभाया।

बिना कह उबत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाय गोविंद भजन बिन अमृत सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ धाम तन तन ते जान जिह कट बस्यो हर नाओ नानक तां कह बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर पेखना काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरे जिस कै अंतर बस निरंकार जिसकी सीख तर संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आप है मन आप है आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियाण सगल ते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस भाव है तिस लय लड़ लाए थान थनांतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जायमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि जे प्रसाद सति अमृत खाए दिशा कर गौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै ते जे प्रसाद सिमरत परमगत पावै जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परमगत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यावन जोग जे हे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिस है त्याग कतबर लुभावै जे प्रसाद सुख शेष होई जय मन आठ पहर दांका जस गा भी जय जे प्रसाद तुझ सब को माने मुख तां को जस रसन बखाने जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगा मान पावे नानक पत सिद्धि कर जावे जे प्रसाद अरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मान सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताक जे प्रसाद तुझ को न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक तांकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पैरी जय मान ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद असभ हस्त सवारी मान तिस प्रभ को कबू ना विसारी जे प्रसाद बाग मिलख धना राख ब्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन वणत बनाई उठत बैठत सत प्रसाद तिसें त्याई तिसें त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जे प्रसाद करें पुन बोधान मन आठ पहर कर दिसका ध्यान जे प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास साज चतारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा नूप जे प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी गत पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखें बिसमाद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल हैं जे प्रसाद संपूर्ण फल हैं जे प्रसाद परमगत पावे ते जे प्रसाद सुख सह समावै ऐसा प्रभु त्यागे बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार जिस प्रभु को मूल तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे हे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू दान को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा जूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू दास राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए।

आप जे पाई जब पैसो नाऊ आप गवाए सो हर गुण गाऊ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रब सो प्रसन्न वसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आपो कछु न किनु लया जित जित लावो तित लगे हरनाथ नानक इनके कछु न हाथ सलोक आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता सात जना की आचरज कथा अष्टपदी साध का संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध का संग मिटै अवमान साध का संग प्रगटे सु ज्ञान साध का संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साहब मैं नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी साध का संग गोचर मिलाए साध का संग सदा पर फुलाए साध का संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध का संग मनोहर बैन साध का संग न कट हूं तावे साध संग असत मन पावे साध का संग माया ते बैन साध संग नानक प्रभु प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापनीत साध संग के सो नहीं बैर साध का संग ना बींगा पैर साध का संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नहीं हो ना ही होताप साध का संग तब आप साध आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध का संग न कब हूं तावे साध का संग सदा सुख पावे साध संग वस्त गोचर लय साधु का संग अजार सहे साध का संग लगे बड़ा मीठा साधु का संग साध का संग न कब हूं तावे साध का संग सदा सुख पावे साध संग वस्त गोचर लय साधु का संग अजार सहे साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साधु कह संग सो तन पावे जिस तन ते सब को बरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध का संग शोभा सुर देवा साधु का संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध का संग सर्वथान गम नानक साध का संग सफल जनम साध कह संग नहीं कशकाल दर्शन भेट तो होत निहाल साध कै संग कलूखत हरे साध कै संग नरक पर हरे साध कै संग ही हाँ हाँ सहेला साध संग विश्रत हर मेला जो इच्छा सो ही फल पावे साध कै संग न विरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुंदरसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाऊ साध कै संग न मन ते विसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगे प्रभ मीठा साधु कै संग कड़ कड़ डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता वखियाने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते ऊची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभु भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पीखा एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह तीर्ज एक जौ बसदा कु खोजै कु चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ नानक जौ पाव का सहज सुपाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मन होई प्रगास जैसे दारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले दावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारू नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभु संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सद सदा सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी का घर सदानंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारू नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शुभ

के भगवान निमख निमख ठाकर नमस्कारे नानक हो परस सगम नस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परते रूप न देखे नेत्र सादगी टहल संत संगेत कर न सुने कहू की निंदा सबते जाने आपको मंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरे मन की बात न मन ते टरे इंद्री जित पंज दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस बैस नो सो जिस परसो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नेह कर्म किस बैसनो का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं वाचे केवल भक्त कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होत कृपाल आव दृढ़ अवरे नाम जपावे नानको बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भक्त का रंग सगो त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खो है किस भगवती की मत उत्तम हो वै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पय बिसन प्रीत हर के चर हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पुरबोधे राम नाम आत्म सोधे राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कहे उपदे जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद प्राण सिमृत बूझे मूल सुख में जाने अस्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग का औपद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कते न पाइये धर्म नानक तिस मिलय जिस लिख्या तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का नवास इसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दाद संतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सोदा दरगे परवान अपने दास को आप कृपा कराए तिस दास को सब सोजी पराए सगल संग आत्मदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म उतावे जीवन मुक्त सो पावे तैसा हरक तैसा उत्सोग सदा नंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरता ऐसा ही जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तेनाओ आपे करन करामन जोग प्रभावे सो ही फन होग पसरो आप वयंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता।

नानक रचना प्रभु रची भव विद अनुक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन परमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगातम निकोर कई कोट पर दर्प को रहे कई कोट पर दुख न करहे कई कोट माया समाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जान है करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरक निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस नस्तारे कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमृत अरसात कई कोट किए रतन सुमंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिर कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे कई कोट जाक के रूप साच कई कोट पूत परे सुकर मृगाच सब ते नेर है सब ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरगुनवासी कई कोट जन्म है जीव है मरहे कई कोट भोजो नी फिरहे कई कोट व्यर्थ ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जह जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्रभु कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म मैं पाप ब्रह्म लहंते कई कोर दर्शन प्राप्त।

0: श्लोक सर्वं निर्गुण निरंकार स्वं समाधि आप आपन किया नानका आपे ही प्रजापस्पदी जब कार्य कश न दृष्टिता पापों तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब वैर विरोध के संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप तब वृक्षों को किसे व्याप्त जब अपना पाप और ब्रह्म तमो का किसो परम आपन के लिया वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होत प्रभु के बोतनी तब बंद मुक्त कौ किसको गनी जब एक हर गम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शक्त कहो किस ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत रहे तब कमन डर कमन कत डरे आपन चल साब करने हार नानक ठाकर गम पार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ का मनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की दास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु का तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छठे कौन बंधन गा दे आपन आप ही चर्चा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन का मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय सर चदर लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे पूकन तृप्तावै कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग मनाई तब कौन माये बा मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय भेद कतेव का कुचीन जब अपना आपा पुरतारे तो सगन अप सगन कहा विचारे जय अपन ऊच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गर जान हो आप जय शल शेद बेस माया ऊहा किसे व्यापत माया आपको आपे आदेश यह गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन चिंता किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा तय कौन कसे कौन सुनने हारा बहु बेंती उचे उचा नानक आपको आपे पहुंचा जय आप रचो परपंच उकार केहु गुण में कीनो बसार पापों ते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हमे मोह परम पै पार दू सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक कहे जय अवगत पगत है आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पा काया पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे को तो करे अनचोज आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे तिस अपन नाय लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेस मार था गंत तोले जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक विस्तार जंत सुभावे संश्रिष्ट उपाय अपने पाने लय समाये तुमते पिंड नहीं किश होए आपन सूर सब जगत परोए जाको प्रभु जीव आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सर सिफ्ट का देता जी जंतर संता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जस मनो बसारे किसता जबर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन लाए
1: जी की जुगत जान का स्वभाव अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जान है आप अंतर जामी रहे उभे आप प्रतपाल जी अनुभव पांत जो जो रचो सो तिसें त्यात ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਈ ਮਲਾਈ, ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਈ, ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਈ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਈ ਨਿਰਵੈਰੁ, ਅਨੰਦਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈ।

आप भला करतूता तने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच। ताकि गात मित कही ना जाए, दूसर होए ता सो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नान के जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुभाऊ, जन कै संग चित्या बैनाऊ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर धन के भर लियो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहजानंद, साध संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वहो नारायण एक, एक रूप जा कै रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूर्ण कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल ए रतन। सुनत कुमावत हो तो उधार, आप तरै लोक नस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहद बाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तन कै साथे। शरण जोग सुन शरण आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पय सबरे, नहु अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निब ही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन वसै सुहोत निधान। सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। एह फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एह निधान जपै मन कोए, सब युग महता की गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद वखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण

वेद सिमरत कथ सासत भगत करहे विचार मुक्त पाइए साध संगत बिन सजाई अंधार चरण

0: चलान वाला।
1: जिस शक्ति न चलने वो है बैल, वो है मन। मन कर बैल, छूट कर पेंदा,
0: क्योंकि मन में बैल रखे। मन ने हर गल का नाम नाल लग स्पष्ट कर दिया,
1: मन बैल है ते ओ अनजान तो बच्चा है निर्गुण है, सियाना नहीं। बैल जी होया तो दूजे पास से पहाड़ बहुत लदिया होया, सड़क साफ नहीं, किनिया औकड़ा नहीं। कोई खुशकिस्मती है इनिया औकड़ा तो लंघ के फिर उन्हें मंजिल मिल जाए। किन्ना भागा वाला है वो मनुख, जिंद सामने सफर दिया एनिया रुकावट होने विघन होनिया परेशानियां हो फिर वह मंजिल से पुज जाए। सारिया रुकावट उनके राह रोड़ा ने, इसे भी गुरु ने आख दिता बड़े लोग सन ऐसे जेडे घरों तक तुरे मिलने वास्ते रस्ते च रह गए। सिख साखा बहुत की है ये सारे रुकावट ही ने, जिंद ज्यादा चेले हो जिस देखधारी के दुआले ज्यादा परिक्रमा करने वाले हो समझ लो यह नहीं पहुंच सकता रह गए। शिक्षा का बहुत किए केसो कियो न मीत, चाले थे हर मिलन को बीचे अटके ची रब ची रह गया। गुरु कहते ने बड़े देखे जेडे चले सन पर रह गए, उन्होंने अपना भी तो लोगों का पहाड़ भी उठा लिया, लोगों का पहाड़ भी उठा लिया, मत्थे टिका टिका लोगों का पहाड़ भी ले गए। संसार के लोगों के मन अंदर तो एक है इन्ना विश्वास भी जिंदे अगे मत्था टेकेंगे बस नतीजा निकलेगा, साडे पाप बख्शे जाएंगे, वो भलिया बख्शे वंड हो रही है हर कोई बचे। इहदे नाल पहाड़ वध रहा है, अपने कोलों ना कोल ताकत कोई निर्गुण बैल है, नतीजा है निकलता राह बच ही रह जाते। गुरु ने कहना खूबसूरत ढंग वरते आख्या सारे फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, ताकि हर कोई अपना पहाड़ चुके सुचेत हो, वो क्यों आलसी हो जाए कि पहाड़ मेरा कोई होर लै जाए तो मैंने चुकना ना पवे। गुरु आलसी नहीं पैदा करना, गुरु ने आलसी नहीं पैदा करना, हर एक पता हो जे मैं अपना पहाड़ चुकना तो उन्हें भी डरेगा पहाड़ पैदा नहीं करना क्योंकि मैं चुकना पैना है। इस तरीके साझा फिक्रा दे असं वो छी जाने चेतन तो छी जाने तो मेहनत कर रहे। सर गुरु ने बाणी ख्याल दिता कह लगे जीवन दरह बड़िया औकड़ा ने, बड़िया औकड़ा ने। ऐसा मनुख एक रस्ते मुश्किल ने, एक पहाड़ अणगिनत चुकया होया, बैल भी निर्गुण है, किवें मैं आस रखा कि इनू मंजिल मिले। गुरु ने एक जवाब दे दिता, कहन लगे औकड़ा जिन्निया ने ना वो हट सकिया जे तू प्रभु दे मालिक दे हुक्मी दे हुक्म विच रहण दी हुक्म मनन दी आदत बना ले। हुक्म मनन दा सुभाव बना ले, जे तू हुक्म मनन दा सुभाव बना ले ना तो फिर हट सकदियां ने औकड़ां। लो ऐसे गल दा जवाब है। मैं एक बार कीती सी ट्रैफिक के असूल सारियां ते लागू होंदे, हर गड्डी ते लागू होंदा, रेड लाइट आ जाए उन्हूं रुकना पैंदा, ते जिन्नियां लाइटां ज्यादा होण उन्ने विघन ज्यादा होंदे ने, सारियां ते लागू होंदा क्योंकि हर कोई अपने लिए जरूरी है। बस पर मैं की एक ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ, ਆਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਪਦਵੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ, ਸਕੱਤਰੀਆਂ, ਮੋਹ, ਮਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਲਝਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਜੇ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਚਨੀ ਹਾਟ ਮਕਾਨਾ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਗਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਲਾਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਜਿੱਤ ਲਾਈ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਜਿੱਤ ਲਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਆਹੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲ ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਅਵਲੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲਿਖੇਗਾ। ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਂਗੂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ।

खुला दरवाजा, खुला रास्ता, बीच के अंदर गली में। ऐसा नाम निरंजन हो, हुक्म की चीज है। एक वो नाम हुक्म है, वो हुक्म की चीज है। जेड़ा मन खराब होते हुक्म भी क्या उनके सामने कोई भीड़ी गली नहीं। एक पास आखे ना भीड़ी गली पाई, जेड़े भीड़ी गलियों में लंघाए जाते हैं उन्होंने इज्जत नहीं होती, उन्होंने पत नहीं होती, तो जेड़े हुक्म नाल जुड़ जाते हैं उन्होंने मुक्त भी थी।

0: परमात्म विच प्रवेश नहीं कर सकते। गुरु कहते हैं जब तू हुक्म विच आवेगा उदो तेरा परमात्म नाल संबंध जुड़ जाएगा। इसके लिए आखिरी लाइन अंदर इस पौड़ी की एक ही फैसला दे,
1: मन ने धर्म खेती संबंध।
0: जब हुक्म मनन की आदत पाएगी तू धर्म खेती संबंध हो जाएगा। धर्म के तेरे दरमियान पहुंचने लिए जिन्हिया रुकावटा ने जिन्ना कारण तू तुर भी रहा है दौड़ भी रहा है धर्मी बनने लिए, पर तू धर्मी नहीं बन रहा। कहने जिस दिन तू हुक्म मनन की आदत बना लेगा उस दिन तेरा संबंध धर्म नाल जुड़ जाएगा, तू मंजिल से पहुंच जाएगा। क्यों? पहली जिड़ी तीजी पौड़ी है ना मनने की, उनके राह की मुसाफरी का हाल सारा दसिया ने कि किमें किमें रुकावटा ने किमें किमें रुकावटा दूर करके इज्जत पत मान सन्मान नाल मनुख वो जरा हुक्म मनन वाला है ना सिख वो धर्म की मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये धर्म की है रब का घर, उथी च रब रहा। इसलिए गुरु ने आख दिता घर बंधो सच धर्म का गद थम अहले, शब्द के थम्मा के उत्ते धर्म का घर बन जिंदा आसरा शब्द हो गए। जो मंदिर को थामे थम्मन क्यों गुरु का शब्द मने अस्थम्मन, शब्द के सहारे धर्म का घर बना इन्ना मजबूत बना कि संसार अंदर लोभ लालच मोह माया दे चखड़ आउन पर ए डोले ना। धर्म इन्ना मजबूत हो गया इन्ना दृढ़ विश्वासी हो गई कि गुरु कहते हैं उस धर्म के घर में रब रहा है। जिहड़ा हुक्म मनन वाला है धर्म के दरवाजे पर पहुंच गया, मनने धर्म सेती संबंध पहुंच गया। ऐसा नाम निरंजन हो जे को मन जाने जिले जिले मनते ने वह जानते हैं असं किमें धर्म तक पहुंचे। हूँ आ गया पहुंचने तो बाद जदों मनुख धर्मी हो गया धर्म के घर में पुज गया मंजिल मिल गई, हूँ की पोजिशन है।

खाई जुगत हुक्म जो वर्ताए खाई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त। मोक्ष यह है जदो मनुख ना किसे गरीब लई ए सोचे भी ए गरीब है, ना किसे राजे दे दर ते मथे रगड़दा फिर इस दर छड़ के ओ मुक्त है। आत्मक आजादी जमीर की आजादी ही तो मुक्ति है। जमीर वाले लोग किसी के बंधन विच नहीं होंगे, जीवन की जमीर वाले लोग किसी के गुलाम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मोक्ष गुरु ने यह गलबाड़ी में चाहती।

हुक्म दे रहे ऐडी महान शक्ति है कि हुक्म ही रब है, क्योंकि नाम ही रब है। निरंकार जे पत्ते पत्ते विच रविया होया ब्रह्मांड नू अपने हुक्म विच चला रहा है, तो वह हुक्म के रूप में ही चला रहा है। तुम देखते हो सरकार पार्लीमेंट दे कुछ चेयर्स से बैठी रहती है, पर देश के हर कोने कोने विच उस सरकार का हुक्म चल रहा है। हुक्म ही सरकार है, सारी सरकार जी का हुक्म नहीं चलता। उन्होंने बड़ी चक दिता, कहने लगे क्या सुल्तान सलाम भी होना, जिंदे हुक्म अगे कोई सलाम ही नहीं करता, चुकता ही नहीं, मनता ही नहीं, कहदा सुल्तान है, क्या सुल्तान सलाम भी होना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। रब ऐसा सुल्तान नहीं जिंदा हुक्म ना चले, रब ऐसा सुल्तान है जान के वस्त खान सुल्तान, जान के वस्त है सगल जहान, जान का किया सब कुछ होए, वो प्रभु है। इसलिए उनका हुक्म ही नमी है। जेड़ा मनुख उनके हुक्म विच रहन का सुभाव बना लवे, वो मोक्ष द्वार भी प्राप्त करता है, वो धर्म नाल संबंध भी पैदा कर लैंदा है। वो तरे तारे गुरसिख वो भिख मंगतिया मंगू दर दर भटकता भी नहीं, उन्हें ठिकाना मिलता है। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटो, बस भटकना खत्म हो गया। मन मेरो धावन ते छूटो, कर बैठो विश्राम, टिकाओ। हम मैं किसी का मंगता नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान का हुक्म मेरे जीवन नाल संबंधित हो गया। हुण असी फैसला करना है कि असी जीवन अंदर हुक्म नूं कोई थां दिंदे हां कि नहीं दिंदे। जो जो हुक्म भय साहिब का सो माथे लै मान्यो, गुरु का हुक्म है। इन्हां शब्दां नाल खिमां दा जा चिठां, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।